की चली। अरे मुंबई ने कोई महिला जावा जमालपुर निकली, अरे मुंबई ने कोई महिला जावा जमालपुर निकली।